0: क्या बात है, 905-673-33-37 खूबसूरत शाम और खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम है थोड़ा अपना मेजबान प्रभाव संधू की हाल चाल है ठीक ठाक हो
1: बल्ली ये तू जदों दी व्याही नी गाले विच पैगी मेरे दुखां वाली बाही नी गाले विच
0: 905-673-33-37 ओ जमाने गए हुण आ फड़ कुंजियां ते आ फड़ मैं चली पेकियां नूं अज कल भाई तुसीं किते चले जाओ अज कल पेके कट जांदियां माइयां।

0: अच्छा कोई ऐसा गाना है, ऐसा संगीत है जिन्हों सुनदिया सार ही थोड़ा तन बदन बस नचन लग जाए, पैरां दे पब उठन लग जाना, मोढ़े हिलन लग जाना, लक झूमन लग जाए। कोई ऐसा गाना है थोनों लगता? मैनू एक गाना पसंद सी, अज तक भी पसंद आ, पर मैं तो नचना नहीं आया कभी भी, वह तो मैं स्टैप ही नहीं कर रहा जी नचने तो पहला होका दे। मेरा फेवरेट गाना सी ते है भी है एक्चुअल दे विच, एवरग्रीन गाना आ। आई थिंक 2000 तक 1890s तक 2000 तक तो मेलियां व्याहां दी शान बनिया रहा, तो ऐसा कोई विआह नहीं हुंदा सी, ऐसा कोई शगन का त्यौहार नहीं सी जिस कोई जागो नहीं जिते नचने तो पहला होका ना लगे। और ईवन के बहुत सारे कलाकार ने स्टेजा ते ये वक् वक् कलाकार ने गाना गाना ते फिर जाके विआह दी रस्म संपन्न हुंदी सी। और अजकल पता नहीं थानू केड़ा गाना ऐसा जिहड़ा लगता कि सुनदिया सार बस कीड़े जी उठ पैण के बई हुण आ जाओ बई। जी सत श्रीकाल जी, सुखी सुखबीर सुखी जी तुसी आने रहो। सत श्रीकाल जी, लल्लू पंजू नहीं, लल्लू पंजू ही होंदा, लंडू पंजू नहीं होंदा,
1: लंडू पंजू होंदा
0: नहीं, लंडू पंजू होंदा जी।
1: हो सकता एरिया दा फर्क होवे, तुहाडे एरिया च आए कहिंदे हुण,
0: तुसी केड़े एरिया चो,
1: केड़ा एरिया तुहाडा?
0: तू मैनूं तुसी दुआबे तो लग रहे हो। लंडू पंजू भी कहिंदे पर असल दे विच ओहदा शब्द है लल्लू पंजू।
1: अच्छा, ये मैनू नहीं पता भरावा।
0: अच्छा ये भी

0: सच कह जे होंगा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: गुरु दी पानी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

0: 5555-1333 लंडन हैलीफैक्स और विंडसर दे विच भी विलेज ऑफ इंडिया दी ब्रांच है। सो 6473653353 साडा नंबर है। ते एक दोस्त दा फोन आया सी, ओ फोन कनेक्ट हो नहीं सकया, ते तुसी दोबारा फोन कर लो। हां जी सुनैन जी, कोई फिर झलक दिखा दिओ अपनी सिंगिंग दे विच, गाना कोई अच्छा जिहा सुनाओ। दोस्तों पहला एक गाना तुहानू सुनाया सी अल्लाहू, वो तुसी दस्या नहीं, ते ओ हुसैन अकबर जी दा ही गाना रिकॉर्ड होया होया, तुसी यूट्यूब ते उसनू चेक भी कर सकते हो, ते बहुत खूबसूरत उन्होंने एक गाना नहीं, उन्होंने अनेक ही गाने यूट्यूब ते तुहानू मिलणगे, तुसी भरोगे ना हुसैन अकबर बाबा ग्रुप पाकिस्तान तो, ते बेशुमार गाने उन्होंने बहुत अच्छे सूफी रंग दे और हीर वर्षा दे विचों बहुत सारे कलाम तुसी उन्होंने सुन सकते हो। बड़े अच्छे लेखक भी ने, उन्होंने अपने लिखे कलाम भी तुसी सुन सकते हो यूट्यूब उत्ते। ते हुण तुहानू लाइव एक थोड़ा जिहा झलक दिखाउणे उहनां दी, किसे वी एक दो बंद जरूर साडे नाल शेयर करो
1: जी। तुसा कहा जी कोई बहुत वधिया जिहा कलाम,
0: हां
1: हां, मेरी नजर च एक ऐसा मौजू है इस तो वधिया मौजू को नहीं
0: जी,
1: वह केड़ा मौजू है कि धीयां सब नूं प्यारियां हुंदियां।
0: वाह क्या बात है, बिल्कुल।
1: धी दे उत्ते मैं अपना लिखिया ही कलाम सुना रहा वा। मापिया दे घर धीआं दा ते

0: थैंक यू थैंक यू
1: जी
0: थैंक यू जी। सो दोस्तों तुसी भी कोई फीडबैक देनी होए, कोई हुसनैन जी नाल गल करनी होए, बाकी तुहानू बोनस दे विच इक हैगा हीर वारिशा कि किसे दोस्त मित्र भैन भरा ने हीर वारिशा दे विचों कोई भी बैंत किसे भी प्रसंग दा सुनना होवे, जे किसे ने हीर पढ़ी होवे वारिशा दी, जे नहीं भी पढ़ी तां किते सुनिया होवे कि तो उहनू अच्छा लगदा होवे। जिवें कल एक दोस्त ने फरमाइश कीती सी कि अज आखां वारिशा नू कितों कबरां विचों बोल, ते कोई किसे ने सुनना होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: 1230.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: प्रोग्राम पंजाबी लहरा नवी सिद्धू दे नाल अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 6475041557 6475041557

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
1: 530.
2: 32, 55, 80.
1: 98. गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: हो काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते,
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी। कॉल 9054502828, 9054502828।
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom, 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 feet दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-2222, 465-

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Rupert Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets de pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services de pal de vich puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna va ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
9: 416-570-0157 जी। मैं हाँ थोड़ी अपनी शिप्रा गोयल, तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।